फिर मंगन जाइए। ऐसी मंग ना करिए जे दोबारा मंगनी पै जाए। कहते मंगना भी है तो एको बार मंग लो, क्योंकि परमात्मा को जो असी मंगना है वह मिल जाना है। ते मंगन लगे इस गल नू सोच लेना चाहिए कि मैं मंग की दे। हुण साहिब सानू एक गल समझांदे ने

मंगनी है। केसो केसो कुकिए ना सोइए आसार रात दिवस के कुकने कबू को सुने पुकार, कड़ी ते पुकार सुनेगा ना, बस मंगता मंगी जाए, मंग बार बार दोहराई जाए, किवे मंगे बबीहे दी तरह। उस चातक दी नहीं आई जिड़ा बार बार प्यू प्यू करदा रहिंदा, मंगी जांदा ना दिन विंदा ना रात विंदा, वो पुकारा करी जांदा। बबीहा बोल रहा सी, किसी ने आवाज मारी ते आखिया बबीहा क्यों प्या बोलना, कहना एक बूंद चाहिए, एक बूंद ली बोल रही, मंगती का पहला गुण है जी। कहने संसार विच कितना बड़ा समुद्र है, नदियां नाले ने, सागर हैं, तालाब हैं, वो कितों भी एक घुट पानी का पी के अपनी प्यास बुझा ले। कहने नहीं, ये पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकते, मैनू तो एक बूंद चाहिए, एक बूंद वास्ते मैं इतना प्यू प्यू कर रही हूं। ख्याल करियो जी, एक बूंद जल कारण चातक दुख पावे, एक बूंद वास्ते वो किन्ना बोल ले। कहना जा जाके सौ, आप भी सौ ते मैनू भी सौन दे, क्यों नींद हराम कर रहे। बबीहा नहीं मुड़िया जी, बबीहा बोलता जा रहे। आखिर की होया, वो एक लिव नाल बोल रहा सी, एक कोलो मंग रहा सी। बाणी विच फैसला है जी,

अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बिरले जाने भगत कबीर साहब का उचारिया होया ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी।

उसनू कोई सुनावे कोई कहे। अगर कोई झूठी कहानी सुनावे लोग उसनू भी सुनते हैं, पर ए ते परमेश्वर दे नाम दी कहानी सच्ची कहानी। और भगत कबीर साहब कह रहे हैं, अंतर जोत राम प्रगासा। जिस वेले इंसान दे अंदर नाम दा प्रकाश हो जाए तां फिर ओ इस कहानी नू जान लेंदा है कि परमात्मा दे मेल दी अवस्था की है। पर एक गल है, गुरमुख विरले जानी, कोई विरला गुरमुख इस कहानी नू जान

अमृत दी एक बगीची है जो उस पूर्ण परमात्मा ने बनाई है। जिवें एक पौरा फुल दे रस विच मस्त होके फुल दियां खिड़ियां पत्तियां विच अपने आप नूं जा बनाउंदा है, जिवें कोई पंछी अपने खंभां नाल हवा नूं उलारा दे के आकाश विच उड़दा है, तिवें ओ गुरमुख नाम रस विच मस्त होके पूर्ण खड़ाव नूं अपने हिरदे विच टिकांदा है ते सोच मंजल विच उलारा दे के प्रभु चरणां विच उड़ारी लांदा है। उस गुरमुख दी उस अडोल

0: नामदेव जी कहंदे ने फिर की होवेगा। भगत नामदेव जी कहंदे ने मैनू पूरा गुरु मिलिया, उसने मेरा जन्म सफल कर दिता।
1: सफल जन्म मोको गुर कीना, दुख बिसार सुख अंतर लीना।
0: सफल जन्म मोको गुर कीना, गुरु ने मेरा जन्म सफल कर दिता। दुख बिसार सुख अंतर लीना, गुरु मिलिया दुख दूर भज गए ते मेरे अंदर सुखां दा निवास हो गया, क्योंकि सुख देने वाला

मैं सिमरन करके ये गल जान ली है कि सिमरन करन दे नाल जिथे दुखा का नाश होंदा है उथे जग जीवन सिंह जीव समाना जीवन देन वाला जेड़ा परमात्मा है ओ दे नाल जीव दा मिलाप हो जांदा है और ओ इंसान इस कहानी नू जान लैंदा है सिमरन सदका कि सारे विच परमेश्वर दा नूर है ओ दी।

जितना समा परमेश्वर दे नाम दा कीर्तन सुनोगे उतना समा तुहानू अपने दुख कलेश भुल जाणगे ते जदों उस रंग विच उठोगे दुख कलेश फिर घेर लैणगे। इसे वास्ते ते गुरु महाराज भगत गुरमुख उपदेश करदे हन कि हर वेले परमेश्वर वल ध्यान रखो। जिवें कीर्तन सुनदिआं दुख भुल जांदे ने, हर वेले उहदा नाम चेते रखोगे तो दुख कलेश

क्योंकि वाणी गुरु देंदा है। इसे करके सतगुरा ने इंसान नु कहा किसे बेतारी दे पिछे ना लगो, बाणी नाल जुड़ो, क्योंकि बाणी परमेश्वर दी है। जो परमेश्वर कहंदे गुरु ओहो ही उपदेश करदे, ते गुरु कहंदे तुसी मेनू परमेश्वर ना कहो, मैं भी परमेश्वर दा भेजिया आया, मैं ते परमेश्वर दा सुनिया।

समझो ये परमेश्वर नाल जुड़िया होया है क्योंकि ये परमेश्वर नाल जोड़ रहे हैं। तो सतगुरु जी कहंदे ने ए देवी देवते अवतार पीर पैगंबर सारियां नूं एक परमेश्वर भेजण वाला है, एक अल्लाह एक वाहिगुरु संसार ते भेजण वाला है। इस करके उहदे नाल जुड़ो। गुरु इन्हां गल्लां दा ज्ञान करांदा है कि मेल करना है तां परमेश्वर नाल करो। ते सतगुरु जी फरमांदे हन गुरु दा मेल किन्ना

कितना चानना कितनी रोशनी होंदी है एक सूरज दे चढ़न ते। अगर हजार सूरज भी चढ़ पवे सौ चंद्रमा भी रोशनी देवे तामी मन दे विच हनेरा रहिंदा है अगर मन विच ज्ञान नहीं। कई बार आप देखते हैं एयर कंडीशन कमरे होंदे ने पर अंदर बैठा इंसान सड़ रहा होंदा है गुस्से दे नाल उहदे मन नूं चैन नहीं होंदा। रोशनी विच इंसान बैठा भी अंधेरे विच होंदा है अंधेरा केड़ा अज्ञान दा। अज्ञान की है? अज्ञान यह है कि दूसरे का हक मैं खावा अपनी सुख वास्ते दूसरे का हक खाना दूसरे नु दुख देना यह है अज्ञान। ते ज्ञान की है? ज्ञान यह है कि भाई सारे विच परमेश्वर है सारे विच खुदा है वाहिगुरु है जे सारे विच वो है फिर ते मैं सारे नाल प्यार करांगा। इन्हां गल्लां

जितनी माया तेनू दिती है उतनी धूल है, जितनी माया मेनू मिली है वो मेरे कोल रहने। पर ब्रह्मा छोटा भरा कहन लगा, सेठ ने तेनू वड्डा समझ के ज्यादा माया दिती, मेनू छोटा समझ के थोड़ी माया दिती। भावे उन्हें माया तेनू बहुती मैनू थोड़ी दिती, पर गए थे आपां कट्टे से, इस करके असी बराबर हिस्सा करना। और पैसे तू झगड़ा हो गए, और झगड़ा हुंदा भी अक्सर देखते हैं, देश दे वजीर या सरकारी लोग भी चौधर और माया दे पिछे अपना जमीर देश कौम भी बेच देंदे हैं। इस वास्ते नहीं कि उन्हां नूं कोई सेवा दा चाह, बहुत घट हुंदे हन सेवा वाले, बहुते ते अपने स्वार्थ वास्ते ए नारा लगांदे ने असां सेवा करनी है। नारियां दे नाल सेवा नहीं हुंदी, सेवा ते मन हुंदी। हुण मन विच लालच दोनों भरा हैगे ने भगत, पर माया पिछे लड़ पे। ए लड़ाई इथों तक जा पहुंची, वड्डे भरा ने श्राप दे दिता, ब्रह्मा तू लालच कीता, अगला जन्म तेरा तंदुए दा होवेगा। पानी विच रह के, पानी दे विच रहण वाले जीवां नूं खा के अपनी लालच वाली ए बिरती पूरी करेगा। हुण ब्रह्मा ने भी तप कीता, उसनों भी गुस्सा आया, उसने भी श्राप दे दिता। कहन लगा, ठीक है भरा, जे मैं मर जाना तो जिंदा तू भी नहीं रवेगी, तेरी भी मौत होवेगी, तू जंगल दा मस्त हाथी बनेगा। और जंगल विच भटकदा भटकदा एक दिन उसे जगह आवेगा जिथे मैं होवांगा। मैं पानी दे विच होवांगा, तू पानी पीण आवेगा, ते मैं फिर अपनी तारां दे नाल तेरियां लत्तां पकड़ के उथे पानी दे विच मैं तेनू गोते दे दे के मारांगा, और इस गल का बदला लवांगा कि तू मैनू श्राप दिता है। ने भगत पर माया विच आ गई, और माया ने दोनों नूं भगती दे थां तों थले सुट दिता। समा आया, दोनों दी मौत होई, वड्डा मस्ताथी बन गया और छोटा तंदुआ बन गया। इस गल नूं गुरबाणी विच भी साहिब जी बयान करदे हन, राम गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यों कुंचर तंदुए पकर चलायो, कर ऊपर कढ़ निस्तारे, गज पत पार उतारे। अनेक शब्दों विच इस शाखी का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच और हिंदू पुराणा दे विच आंदा। एक भरा हाथी बनिया, एक तंदुआ बनिया, और वो समा आया, होता जिहड़ा हाथी बनिया सी, बहुत सारे हाथी इहदे नाल ने, यह जंगल विच फिरदा फिरांदा गंडका नदी दे डुंघते आ पहुंचिया। गर्मी सी, नदी दे विच जद वड़िया और किनारे ते धुप करके पानी गर्म सी, ए ज्यों ज्यों अगे होया इस नूं ठंडा पानी मिले, और हौली हौली ए हाथी पानी दे विच काफी अगे तक चला गया, और अगे एदा छोटा भरा तंदुए दी जून विच बैठा सी। उसने अपनी तारां दे नाल हाथी दे अगले पैर पकड़ ले, और हाथी नूं अपने वल खिंचना शुरू कीता। पहला ते हाथी ने परवाह ना कीती, पानी पी के वापस मुड़न लगा, पिछे नहीं मुड़िया जांदा, ते हाथी समझ गया मैनू कोई पकड़न वाला तगड़ा जीव है, इसने जोर लाया। कुछ पिछा आया, पर फिर तंदुए दा जोर चलिया ते हाथी

किस तरह अपने प्यारियां दी अरदासां सुनता है। परमेश्वर भगतां दी रखिया वास्ते अपने दूतां नूं अपने प्यारियां नूं भेजदा है। विष्णु भगवान ने आप नदी किनारे पहुंच के तंदुए दियां तारां कटियां और हाथी दी बंद खलास कीती। ए हाथी पानी विच बाहर निकलिया, नदी दे किनारे आया ते की देखदा है, सामने विष्णु भगवान खड़े हैं। बेशक जोन हाथी दी है पर सोजी है, हाथी नु सारी सोजी है, फिर भगवान सामने खड़ा है ते जीवन दी सोजी क्यों ना होवे। अगलिया दोनों लता निवा के हाथी ने नमस्कार कीती और मानो पुकार पिया करदा है, भगवान कृपा कर इस जून दे विचों साडा छुट

पुकार जो सुनी सुनी जा सकती है, तेनू ते परमेश्वर ने सोझी दीती है, रसना दीती है, समझण दी सोचण दी शक्ति दीती है, फिर तू क्यों नहीं उहदा सिमरन करदा। कर सिमरन, परमेश्वर तेनू भी मिलेगा।

आया शहीदियां दा ओ है कौम पूंजी दा जिंदगी दी जिदे कोल सरमाया शहीदियां दा। इतिहास गवाह है के मजलूम ते गरीब दी रख्या लई सच अते अणख दी हिफाज़त वास्ते देश ते कौम दी रखवाली लई जदों भी किसे सिख योदे ने अपनी शहादत दिती ता आसमान ने एक गिठनियों के सजदा कीता ता उस वक्त धरती दी धौणवी मान नाल एक गिठ होर उच्ची हो गई। समय ने भी एक पल वास्ते रुक के इन्हां शहीदां दीआं शहादतां नूं अपने सुनहरी पन्नियां ते उल्लिखिया। असीं जदों भी सिख इतिहास दे पन्ने फरोलीए तां सानूं हर एक पेज ते किसे ना किसे सिख शहीद दा मुस्कुराउंदा होया चेहरा नजर आउंदा है। इन्हां अणगिणत शहीदां विचों शहीदां दे सिरताज पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दी शहादत अकाल अकैडमी बड़ू सिंह दीआं बीबियां दे ढाडी जथे नूं साध संगत दी भेटा करन दा माण प्राप्त है। सो पेश है गुरु अर्जन देव जी महाराज दी शहादत।

गुरु अर्जन देव जी का कातिल दरअसल जहांगीर ही सी, पर जहांगीर तो इलावा मुर्तजा खां ते चंदू दा भी हाथ सी। चंदू बादशाह जहांगीर दा शाही दीवान सी। जदों चंदू दी धी मुटियार होई ता उसने अपनी धी वास्ते चंगा वर घर लभन लई एक पांदे ते एक नाई नू जो कुछ समझा के तोरिया है उन्हां बोलां नू ढाडी जथा हे इउं दसदा है।

जी दी तारीफ दी गल सुन के चंदू दीवान खुश होने दी बजाए गुस्से विच लोहा लाखा हो गया। माया तारी अत अन्ना बोला शाज ना सुने बहरोल कचोला दे महवाक अनुसार चंदू दीवान कहन लगा, ओ किथे मैं शाही दीवान ते किथे अर्जन देव एक फकीर, किथे राजसी शक्तियां ते किथे साधां दा डेरा, ओ तुसी चुबारे दी इट मोरी नू लाए हो। चंदू दीवान गुस्से विच लोहा लाखा होया कहन लगा, भावे तुसी मेरे मुताबक चोन ठीक नहीं कीती पर फिर भी मैं तुहाडा मान नहीं तोड़दा, जाओ जाके सगन पा आओ। ए सारियां गल्लां दिल्ली दियां सिख संगतां ने सुन लिया, उन्हां दा मन बड़ा परेशान होया क्योंकि सच्चा सिख कदे भी अपने गुरु दी निंदा नहीं सुन सकदा। गुर की निंदा सुने ना कान, कानों घूर के पिछा हटांदा ऐ, जे तू प्यार नाल नहीं बिठाउण जोगा हंजू वेख के कास तो हसदा ऐ, जे तू रोंदियां नू नहीं वरौन जोगा। कानों दुख दे दिलां नू दुखांदा ऐ, जे तू जख्मां ते मलम नहीं लौन जोगा। कानों बंदिया कूड़ विहासदा ऐ, जे तू नेकियां नहीं कमाउण जोगा। दिल्ली दियां सिख संगतां ने गुरु अर्जन देव जी महाराज दे नाम एक चिट्ठी लिख के हे क्यों भेजी आवे।

सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बणी है। सतगुर की रीसे होर कच्चू पिच्चू बोल दे से कूड़िया।

वार्निंग पढ़ के पता लगेगा ना। ए जो वार्निंग है, जो चेतावनी है, ये तो पता उदे लगेगा जदों असी गुरबाणी नू पढ़ांगे। वो कहते हैं जे

जितने भी शरीर दे रस हन उतने ही दुख लगते हैं। इस करके महाराज जी ने एक पंक्ति दे विच गृहस्थियों नूं खास करके गृहस्थियों नूं यह समझाया है कि जे तुसी गृहस्थी हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुहानू अकाल पुरख वाहिगुरु ने जां सतगुरु ने एग्जेम्पशन दे दित्ती है कि हुण तुसी जो मर्जी खाओ पियो भोगो रस माणो। नो, तुहानू भी योगियां ऋषियां मुनियां वाली ही साधना तपस्या करनी है भावें तुसी गृहस्थी हो, क्योंकि असीं कई दफा सोच लैंदे हां ना कि असीं तां गृहस्थी लोग हाँ, असीं कोई साधु संत थोड़ो अते अपने आप नूं आप ही एक्सक्यूज कर लेने हैं कि साड़ी सोशल लाइफ भी है, असीं गृहस्थी हाँ। हुण गुरु साहब गृहस्थी किस नूं कहिंदे हन इह नहीं असीं सुणिया, इह नहीं असीं सुणिया, असीं सिर्फ इन्ना ही सुणिया कि गुरु बाबा नानक देव जी महाराज ने गृहस्थ धर्म नूं बहुत उच्चा आख्या, यह सुणिया। ठीक है ना, गुरु नानक साहब महाराज ने गृहस्थ धर्म नूं प्रवान किया, पर किस किस्म दे गृहस्थ धर्म नूं प्रवान किया ए दसना भी मुश्किल है, अते इस नूं मनना भी बड़ा मुश्किल है, ते सानू शायद किसी ने दसिया भी ना होवे। गुरु बाबा जी दसदे हन कि ए गृहस्थी, जे तू सोचे कि गृहस्थी होण दे नाल तेनूं एग्जेम्पशन मिल गई है कि तू हुण बॉडी दे लैवल दे उत्ते रह के सारे बॉडी दे रस जो टेस सन उन्हां नूं माणी जा, तैनूं कोई तपस्या करन दी, कंट्रोल करन दी, अपने उत्ते कोई मास्टरी करन दी लोड़ नहीं है, क्योंकि चूं तू गृहस्थी है इस करके यू आर अलाउड। वो कहिंदे ऐसी गल नहीं। हुण पंक्ति सुनने वाली है बहुत प्यारी,

0: है दृष्टि। इसके अर्थ सुनो,
1: सो गृही जो निग्रह करे,
0: कहते गृष्टि वो है जो निग्रह करे। निग्रह का मतलब, निग्रह का मतलब है कि अपनिया इन्हें सेंसुअल प्लेजर्स के उत्ते अपनी मास्टरी अचीव करे, इन्हों का मास्टर बने, इन्हों उत्ते काबू पाए, इन्हों उत्ते कंट्रोल करन दा अभ्यास करे। बेशक आहिस्ता आहिस्ता करे, आहिस्ता आहिस्ता करे, पर एक दिन ऐसा उसके जीवन दे विच आए कि वो इन्हां इंद्रियां दे रसां दा गुलाम न रहे, क्योंकि जो इंद्रियां दे रसां दा ही गुलाम रह गया वो शरीर दे ही तल ते रह गया, वो शरीर तो बॉडी तो अगा इवॉल्व नहीं होया। जो बॉडी तो अगा इवॉल्व नहीं होया उसनूं दोबारा फिर बॉडी दे विच पाया जाएगा, वो फिर जन्म मरण दे विचों गेट चो मुक्त नहीं होया, दोबारा उसे ही गेट दे विचों फिर आ जाएगा। और यह भी पता नहीं किस किस्म की बॉडी च पाया जाएगा, यह भी कोई पता नहीं ना। जो शरीर दे लैवल ते अपनी लाइफ नू एंड करता है दैट विल कम बैक इन टू द फॉर्म। तो महाराज जी आखते हैं सो गृही, ओ गृहस्थी है जेड़ा गृहस्थी हुंदिया होया, गृहस्थी विच रहिंदिया होया की प्रैक्टिस करे अपनिया इन्हां इंद्रियां दे तमाम रसां नू मास्टर कर लै, कंट्रोल च कर लै, काबू च कर लै, ते इन्हां नू जित लै। सो गृही जो निग्रह करे। अगली गल, जप और तप। जप इज मेडिटेशन, नाम सिमरन। तप है अपने जीवन दियां, अपने बिहेवियर दियां तमाम जो जो लो नेचर दे जो साडे सुभा हन, जितनी भी साडी लोअर नेचर है, पशुआं वाले सुभा हन, अपने आचरण नू, अपने बिहेवियर नू, अपने लाइफ स्टाइल नू तब्दील करन दी तपस्या करे, तपस्या करे। तो नंबर एक, इंद्रियां उत्ते इन्हां दे रसां कसां उत्ते काबू पाउण दा अभ्यास करे, ए तप करे। दूसरा, अपने आचरण अपने कर्मां नू निर्मल बनाण दे वास्ते तपस्या करे, जप तप संजम, अते अपनी जिंदगी च संजम लियावे। संजम दा मतलब कि ओ अपनिया नीड्स नू कटावे, अपनिया नीड्स नू अननेसेसरी ना बधाई जाए। पदार्थां नू देख के मार्केट दे विच, बाजार दे विच जो कुछ भी एडवरटाइज किया जाता है, यह जरूरी नहीं है कि उसने खरीदना ही है। बहुत वाइजली अपनिया नीड्स नू समझे, अपनिया नीड्स नू वध तो वध सादगी दे विच, सिंपलिसिटी दे विच रखने की कोशिश करे। यह है मतलब संजम दा, कि लाइफ नू बहुत होवे बहुत ब्यूटीफुल एलिगेंट पर बड़ी सिंपल होवे, बहुत सिंपल होवे, और ऐसी होवे कि जिसनू मेंटेन करन दे वास्ते उसनू दिन रात भटकना ना पवे। क्योंकि कई दफा सानू अपने एक्सपेंसेस पूरे करनू ही, अपने बिल्स पूरे करनू ही सारा दिन रात सानू भटकना पैंदा है जस्ट टू पे अवर बिल्स। पर असी उतने क्रिएट ही क्यों करिए? कबीर साहब ने आख्या है सादा जीवन जियो। गृहस्थी वो है जिस दे जीवन दे विच, कहिंदे जिहड़ा गृहस्थी जीवन दे विच बैठा होया इन्हां चीजां उत्ते कम करदा है, अपनिया इंद्रियां नू कंट्रोल करदा है, इंद्रियां दे स्वादां दे उत्ते ओह फतेह पाउंदा है, अते अपने आचरण नू ओदी तपस्या करता है, अते अपनी जिंदगी च संजम लियांदा है। जप तप संजम भिख्या करे, इस गल दी वाहिगुरु तो भिख्या मंगदा है। पुन दान का करे शरीर, कहिंदे ओदा जिहड़ा शरीर है, कहिंदे ਉਹ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਲਵੇ। ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਗ੍ਰਿਸਤੀ, ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਓ ਉਸਨੂੰ।

कि हे निरंकार साढ़े कलयुगी जीवां दा सुभाव ऐसा है कि जेड़ा हर वेले साड़ी रख्या करदा है, हर वेले साड़े नाल है, जिदे सदके असी ए संसार दे नजारे संसार दे खेल वेख रहे हां, वो सानू याद नहीं रहा, असी भुल गए हां उसनू। जेड़ियां वस्तुआं सानू तोड़दियां हन असले नालों परमेश्वर नालों, उना वैरियां नाल असी प्यार पा लिया, जिना ने साढ़े नाल नहीं चलना उना नाल तां प्रीतां पा लिया, जेड़ा हर वेले नाल है उनू विसार छड्डिया। संग सहाई सो आवै ना चीत, जो बैराई तां स्यों प्रीत, बलुआ के ग्रह भीतर वसै। ए रेत दी कंध है, ए जेड़ा साड़ा शरीर है ए रेत दा घर है। पहले बचपन फिर जवानी, जवानी ने बचपन नू खा जाना है, ते बुढ़ेपे ने जवानी नू खा जाना है, ते काल ने बुढ़ेपे नू खा जाना है। ए रेत दा घर है, ए डिगदियां डिगदियां एक दिन मिट्टी दी ढेरी हो जाएगा। उस घर विच बह के भी असी कितने केल कर रहे हैं। आ संसार भी एक रेत दा घर है, जिदे विच बह के असी तरह तरह दे केल कर रहे हैं। वेखदे हां इना अखां दे वेखदियां वेखदियां अनेकां चले गए हन, पर असी अपने आप नूं समझदियां भई असी नहीं जाना। हजूर कहिंदे हन बलुआ के ग्रह भीतर वसै, रेत दे घर विच वस रहा है। अनद केल माया रंग रस है, अनेकां केल करदा माया दे नाल, ओ भी रस मान लवां ओ भी स्वाद मान लवां। हजूर कहिंदे हन इस शरीर लई सब कुछ कर रहे हैं, जिदे आश्रे ते शरीर चल रहा है उस परमेश्वर का भी ध्यान धरिया कर, उस परमेश्वर का भी सिमरन करिया कर। जिदे आश्रे ते शरीर चल रहा है उनू तू भुखिया ही मार छड्या, अज तक जो कुछ तू कीता अपने शरीर लई कीता, आत्मा लई कुछ नहीं कीता, आत्मा नू कदे कीर्तन का भोजन नहीं दिता, सिमरन दा पदार्थ नहीं छकाया, गुरु दी कृपा दे वस्त्र नहीं पहनाए, सत संगत दी सुगंधी कदे नहीं लाई उस आत्मा नूं तू। शरीर लई तां तू बहुत कुछ कीता, इस लई बलुआ के ग्रह भीतर वसै, अणद केल माया रंग रसै, दृढ़ कर माने मने प्रतीत। ए समझदा ए प्रीतां मेरियां सचियां प्रीतां हन, पर काल ना आवे मूड़े चीत, ए नहीं पता जदों अकाल पुरख वाहिगुरु दा सदा आ जाना है, काल ने आ जाना है, ये शरीर तां मिट्टी दी ढेरी हो जाएगा। इसलिए भाई उदा नाम जपया कर, उदा सिमरन करिया कर, जिस वाहिगुरु ने तैनू इतनियां बख्शिशां कीतियां हन। गुरु अर्जन देव पातशाह सानू अरदास करन दी जाच दस रहे हन, ते आप कर रहे हन। जिस तरह मास्टर पहला आप पहाड़े बोलता है फिर विद्यार्थी बोलते हैं, गुरु अर्जन देव पातशाह भी साढ़े ते उपकार करते हुए कहते हैं आओ भाई तुसी भी अरदास करो, मैं भी तुहाडे लई

चले ले मरदाने तू साडे बस्तर फड़ असी वेई नदी विच इश्नान कर मरदाने ने बस्तर पकड़े हजूर वेई नदी विच प्रवेश करदे हन चुब्बी मारदे हन पैरी सा संगत बाहर भी निकले आखो सी बाबे ने ऐसी चुप्पी मारी मर्दाना बड़ा चिर उड़ीकदा रे पातशाह हुण बाहर आउंदे हन हुण पानी विचों बाहर निकलदे पर हजूर निकली मर्दाना नदी दे कंडे ते कदे इधर भज्या जांदा है बाबा किधर गए हो कदे इधर भज्या दिन चढ़ गया अजे भी बाबा बाहर गया कहरी सास संगत बेबे नानकी नू जाके लोका ने कहा धन गुरु नानक पातशाह जी दे प्यार वाले ने जाके कहा बेबे तेरे वीर ने वेई नदी में चुभी मारी है बाहर नहीं आया प्रेमी तो अखा चो पानी बहा रहे जिन्हां दे अंदर गुरु नानक दा प्यार सी उन्हां दे अखा चो तो प्यार दे आंसू जा रहे हैं पर जो लोग नुक्ताचीन सन नास्तिक सन उन्होंने कहा गुरु नानक डूब गए आखो सी दौलत खान वाली हिसाब किताब करना सी मोदी खाने का मोदी खाना गरीबा नु लुटा दिता है इस भाइये जराम नू भी बड़ी उदासी पर बेबे नानकी ने कहा तुसी उदास ना हो नानकी तलवंडी तो नाल लेके आया सा नानक नो मैं ते कालू ने कहा सी जयराम इसनों किसी कम लाओ मोदी खाना ले दिता पर आज पता नहीं की होया बेबे ने कहा नहीं तुसी उदास ना हो मेरा वीर कदे डूब नहीं सकता वो तो डूबिया उतारने वास्ते आया किसी महापुरुष ने लिखे चंद्रमा की मिसाल दिती है गुरु दी भी चंद्रमा की करदा है ते गुरु की करदा है तो लिखे है कालू चंद दिया नूर भरे चन्ना चन्नो सौ गुणा वध लिशकार दें चढ़े चंद ता डूबदा तारियां नू तो ता डूबिया होया नू चंद्रमा चढ़ जाए तारियां दी लो मधम पै जांदी फिर चंद्रमा दुनिया नू रोशनी देंदा है दे मत्थे ते कालक लगी स्याही अपनी चन्न तो नहीं लेंदी तू लखां दी स्याही उतारदा है फिर उच्चा वसना अर्श दे किंगरे ते ऐपर नीवियां ते चाती मार तो प्यारी सास संगत सारे सुल्तानपुर च बड़ा प्रोपेगंडा हो रहा है आखिरकार हजूर वेई नदी दे विच भी मार के किथे पहुंचे सचखंड पहुंचे अगे नूर ही नूर है सचखंड दे दरवाजे अगे हजूर ने तकिया लखाई मोहम्मद लखाई रामचंद लखाई कृष्ण लखाई गोरख लखाई देवी देवते खड़ोते तो साहबाने थे शब्द उच्चारण कीता है जित दर लख मोहम्मदा लख ब्रह्मा विष्णु महेश लख लख राम वडीरियां लख राही लख ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर तो दर्ज नहीं है
اور بھائی بالے والی ساکھی وچ لکھی سچ کھنڈ دے دروازے تھانی اندر چلے گئے اس جوت میں جا کے لین ہو. تھوڑے سمے دے بعد نرگن تو سرگن رو تار کے سامنے تن گرو نانک پادشاہ بیٹھے آواز آئی اے نانک ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਲ ਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਪਾਉਣਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕ ਤੋ ਪਹਿਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਾਖੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਰਸਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼

फिर लक्षण आशा जी दीवार पर लगा के कीर्तन भी समाप्ति उसपरंत अरदास गुरु के हुक्म नामे ए मर्यादा तो दास ने बेनती की थी सी भी आज दी चाह सेवक बोलो तो मैं की सेवा कर सकता हां तो जो तुसी प्यार दिता है और ये भी गुरु की प्रेरणा से तो उस संसार अज चाह दा लंगर तैयार है और मैं तो भी बेनती की थी कि कई प्रेमी कह लगे भाई जी साडा भी हिस्सा विच पा आखो श्री भाई कई प्रेमी ते नाल उन्होंने कहा भी साडा नाम ना लई ते असी भी जिना जिना ते गुरु ने मेहर की थी सेवका नाल हित किया है तो उन्होंने चाह का लंगर तैयार किया है तो हुण प्यारी सात संगत सारे प्यार नाल क्योंकि अज आसा दीवार का कीर्तन भी पूरा हो तो मैं चाहूंगा अखीरला छंद अज आसा राग विच आसा राग तो आओ अखीरला ये छंद है अज आसा जी दीवार के कीर्तन का भोग पै रहा है सर्व आसा पूर्णी आसा जी दीवार तो ये छंद आप आसा राग च लगा।

तेरी बाणी ए बाणी तो ऐसी है मैं जिक्र करांगा बाणी बारे कि बाणी की है।

पवित्र बाणी इसे बाणी दी बरकत ने बुद्धू दी बुद्ध चमका दिती, इसे बाणी दी शक्ति ने पत्थरां चो नहर वगा दिती, इस बाणी बन्ने लाया सी मक्खन दे डुबदे बेड़े नूं, इस तरनी लखां तारे ने गिण दसां केड़े केड़े नूं, ए ख्वाश हमेशा रहंदी ए कोई गुरमुख नदरी पै जावे, ओ पड़े अगमी बाणी नूं मेरे मन दी काल

ठगा नू सज्जन करदी कोई समझे रमज इलाही नू ते आ जड़ी गल कहन लगा ए बाणी ऐसी कुंजी है जो दिल दे जंदरे खोल दिए प्रीतम दा दर्श करन दिए मुंहों भी सब कुछ बोल दिए कदे उला के कोई वेखे बाणी बोल दिए जिन्हां ने बाणी नू बुला के वेखे कोई बोले तो सही पर सात संगत एक गल याद रखना जे किसे नाल गल करनी होवे ना गल करन तो पहला ओदी बोली नू समझना जरूरी है ओदी पढ़ाई पढ़नी जरूरी है क्योंकि नहीं तो बोली समझना आएगी बाणी नू कोई बुला के वेखे तुसी कदे अरदास करो अरदास तो बाद कोई हुक्मनामा लो जो तुहाडे मन विच होएगा ऐसा ही हुक्मनामा आ जाएगा बाणी बोलदी ए बाणी ऐसी कुंजी है जो दिल दे जंदरे खोल दिए प्रीतम दा दर्श करांदी है मुंहों भी सब कुछ बोल दिए ए ओ पवित्र बाणी आओ सारे रसना पवित्र कर।

जिन्होंने बाणी नु कुछ समझिया है, कीर्तन कर रहे सन ना इस तो पहला ते पढ़ रहे सन, धन धन गुरु जिन नाम अरातिया, आप तरिया जिनी डिठा तिना ले छड़ाए, सवाल कीता बाणी की है अजे तक समझ नहीं आई, बड़ी बार कीर्तन सुने, बड़ी बार कीर्तन कीता है, पर अजे तक बाणी दा नहीं पता लगा कि बाणी की है। हुण किहदे कोल पुछिए बाणी की है, ते सात संगत कई कई गुरसिख कई बीबियां जदों गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा पाठ करदियां ने, ते जदों पाठ करन तो बाद जितने सफे हो जान, कई लोग कागजां दियां निशानियां रख देंदे ने, ते जिसने कदे प्रतख गुरु की देह समझिया होवे, साडी अख च कोई एक तीला चला जाए ते सानू सारी रात नींद नहीं आउंदी। एक बारी आखो प्यार नाल सतनाम श्री वाहे। सवाल कीता ए बाणी की है, जिसनों बाणी दा पता है उसने कलम चुकी ते लिखना शुरू कीता। सानू एक सनेहा दिता बाणी पढ़न वाले हो, ए बाणी की है। साडी नजर ते सिर्फ इथों तक पहुंची है कि ए अखर ने ए सफे ने, जिन्हां नूं असी वरके कहने हां, जिन्हां नूं असी पत्रे कहने हां, जिन्हां नूं असी कई वार होर सुचजी बोली विच अंग कहने हां। ते सात संगत आ वेखो, तन है इसकी कलम ते तन है ए लिखण वाला, कहण लगा ए अखर नहीं ए वरके नहीं, ते फिर की है। ते सात संगत अज तू ए प्रण कर लो, जो मैं कहण लगा अज तो बाद गुरु ग्रंथ साहिब नूं इसे तरह समझना। जिसने कलम चुकी है ओ लिख रहा है, ओ कहंदा ए अखर नहीं ए वरके नहीं, ते जिदे सामने लिख रहा सी ओ कहन लगा फिर की है। ओ कहंदा जो मैं वेखे ओ मैं लिख रहा, जो मैं वेखे ए अखर नहीं ए वरके नहीं, ए सीना ए गुरु नानक दा कमाल है।

जोबन पर लिया। सुंदरता का मान, जवानी का मान और अक्सर इस मान दे विच इंसान वो कम भी कर बैठता है जो नहीं करने चाहिए। पावत रलिया जवानी दे मान विच, जोवन दे मान विच नचदा टपदा इंसान किसी की परवाह नहीं करता। इहदा ए मतलब नहीं सोहना रूप नहीं होना चाहिदा या जवानी नहीं चाहिए। साहब जी कहते हैं जो सोहना रूप है ते मुबारक है तेरे, जवानी है तेरे ते मुबारक है तेरे, खुशियां हैं तेरे कोल मुबारक है, पर जे हरि का नाम नहीं ते फिर सब कुछ बेकार है। आपको सतनाम से तेरा नचा।

सवारी अजकल कारा हूं हवाई जहाज हूं हैलीकॉप्टर हूं ते पहले समय विच हाथी घोड़े रथ इन्हां दी सवारी होंदी सी ते राजे महाराजे हाथी की सवारी करिया करते सी साहब जी कहते हैं तले कुचरिए कुचर हाथी रुके।

तू हाथी के सवार हो गए, गहने पा के कीमती वस्त्र पा के सिर ते सोने का छत्र चुला के तू आखे मैं बहुत खुश हो गया। तू भावे समझदार है, मैं बहुत

आप ही पाया, पर चेता भुल गए। लभदे फिरदिया डोट है सी, पर पता नहीं कितने रखे। सौ का नोट जेब विच है, पर चेता भुल गया ते संबंध टुट गए। अचानक जेब विच हाथ मारे आ ते जेब चो नोट निकल आया, संबंध जुड़ गया नोट नाल, क्योंकि नोट लभ गए। हुण घर विच किन्नियां चीजां लिया लिया के रखते हैं, ते जद कदी घर खोलते हैं ते कई चीजा घरों ऐसिया निकलदियां ने जिन्हां नूं असीं भुला चुके।

मौलवी साहब कहने लगे, अच्छा तू दस, मैं तो एवं सवाल किया बिना मतलब का सवाल, पर जे तेरे को जवाब है तो तू दस। बच्चा उठ के कहन लगा, मौलवी साहब वैसे तो खुदा

ता पिता ने किया बेटा ओ ते ज्योति ज्योत समा गई। पर उन्हां दी जगह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहब ज्योता जगा रहे ते पुत्र कहन लगा पिता जी मैं फिर आनंदपुर साहब जा

पिता ने दिता देखिया बेटा इस 100 रुपया धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरणा से रख के मेरे वालों मत्था टेकी 500 रुपया अपने वालों भेट करने वास्ते जेब च पाया धर्मशाला पहुंचे है अरदास करके ये सारिया संगत उज्जैन तो आनंदपुर साहब को तुर गई हमने मन में सोचता जाता गुरु का दरबार कैसा होगा क्योंकि उनकी बाणी में बड़ा आनंद है वो गुरु के समाधि ला के बैठा होगा मैं जाके बुलावांगा वो नेता भी नहीं बोलना क्योंकि साधुआं की संगत करता सी जो देखता सी उसे तरह गुरु साहिबां

क्योंकि जैसे कोई कर्म करता है उसनु फल भोगना पड़े। और माया का थोड़ा जहा लालची से लम्मा पिया सोचता है मना 600 रुपये बेटा तरा के ना तरा आखो सदरा आपसे जिस समय की असी गल करते हैं उस वेले का 600 रुपया अज के हजारों नालों ज्यादा।

और बैठी जिस तरह आप बैठे। कीर्तन भी समाप्ति हुई, कुछ संगता बैठिया रही हैं। फिर साहब जी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पूछते हैं, तुसी कीर्तन सुने तुहानू कैसा रस आया? हुण जिहड़े दे रोज कीर्तन सुनते सन कहन लगे महाराज सुभा दा रस है, क्योंकि साडा सुभा बन गया है रोज कीर्तन सुनना। कोई कहन लगा कन्ना दा रस है, क्योंकि कन्ना दे नाल कीर्तन सुने। कोई कहिंदा जुबान दा रस है, क्योंकि मूंह दे नाल कीर्तन कीता है। ते साहिब जी सहजधारी नूं पुछदे ने, पर सिखा तू नहीं बोलदा, तेनू कैसा रस आया? और ये कहता है, जे मैं आखा सुभा दा रस है, पहला मैं कदी कीर्तन सुने। जे मैं आखा जुबान दा रस है, मैं खादा कुछ नहीं। पर एक गल है, ज्यो ज्यो कीर्तन सुने मन भटकया नहीं, मन मन दे विच ही टिक गया। आपको सतना आपसी कहन लगा महाराज ये सिदक ते संतोख दा रस है। आपको सतना आपसी पाणी सुन के मन विच संतोख और सिदक आ जाता। साहब जी कहन लगे सिखा निहार, एक महीना सेवा की और एक दिन 100 रुपया पिता वाला और 500 अपने वालों गुरु साहबां नूं भेट करके मत्था टेकिया। ते नाले कहन लगा महाराज कुछ बख्शिश करो ताकि मैं हुण घर नूं जावां। कड़ा प्रसाद दिता कि सिखा ये अपने पिता नूं नहीं साडे वालों एक सरबलो का कड़ा दिता, जिहड़ा कड़ा असी हाथ विच बन्ने। नाले वचन दिता कि सिखा इस कड़े का अद वर्ग

खुशी खुशी आनंदपुर साहब को रहे हैं, पर जिस तरह ही आनंदपुर साहब तो बाहर आया तो सारा आनंद गवाच गया। आखो सतनाम श्री माया वाली फिर फिर जाग गई। जिम्मे असी कई बार कीर्तन में बैठे होने ये बड़ा आनंद आता, जो गुरुद्वारे बाहर निकलते हैं तो यह आनंद भुल जाता है, और गल याद आ जाती। इसे तरह आनंदपुर साहब को निकले तो सारा आनंद गवाच गया। कह लगा मना बहुत माड़ा गीत है, 600 रुपया तो रोड के आ गया, एकड़ा प्रसाद दिता है गुरु ने जेड़ा पिता घर रोज ही बनाता है, एकड़ा दिता है। कहते सन जो मंगेगा तेनों मिलेगा, इस कड़े की अपनी कीमत 4 आने नहीं, इन्हें मैं 1000 रुपए कितों दे देने। आपको सतनाम श्री गुरु उदास हो गया, गुरु की निंदा करता होया।

ο γκουρού την Ινδία νήσωσε. Τιάν σε κουρκέ. Καρβάλι κουρτζαλάκι. Δεκέν λεγα παλιέλοκε, εκ μπουρκ άε. ओ की जाने गुरु दा वचन की होता जे तू मेरे नाल सहमत हो में गुरु दा वचन ते कड़ा ओ दे गुरु असी ले ली ते साथ संगत कई परिवार बड़े भागा वाले होते ध्यान सिंह माजरीए नु देखो ओ दे मन विच कितना प्यार है ते अगो ओदी घरवाली कहन लगे स्वामी जी एक रुपये दी एक मन कणक आंदी मन कणक साफ करन लगी एक दाना चुकीए ते उते आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु वो दाना चुक के एक पासे रख दी फिर दूसरा कणक दा दाना चुकीए फिर आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਣ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਣਕ ਸਾਫ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕਣਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਚਣ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਪਾਣਾ ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਕਣਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈ ਗਹਿਣੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚੇ 605 ਰੁਪਈਆ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ

नाले के है। सिख सिख का सत बणज, सिख सिख का पाओ, दगा सिख मम ना करे पानी अन्न पकाओ। सिख रु सिख नाल दगा नहीं करना चाहिए।

ते मैं चाहना तेरे दुध की कीमत चुका दे। एक गल कहनी चाहवांगे नौजवान बच्चे या वो भी जेड़े मापियां दी

अपना दुध पियाया ते मैं चाहना तेरे दुध की कीमत चुका दी। मां बड़ी सियाणी सी, कह लगी अच्छा हरि सिंह तू इस लायक हो गए, मैं तेनों जन्म दिता है, तू इस

बिस्तरी दे डोल देता, बिस्तरा गिला हो गया, कपड़े गिले हो गए, हरी सिंह की जात खुल गई और नींदर नहीं आते क्योंकि कपड़े गिले, एक सर्दी उठ सकता नहीं, उठ सकता नहीं क्योंकि मां नाल वादा कीता है मैं सौवांगा, पासे मारता है बिस्तरा गिला, नींदर नहीं आती पर सत्संग मां दे फिर मां ही मां पासा मार के लगी गई, अखा बंद पर जागती, अज मां का मन बड़ा दुखी हो रहा है, अज मेरे पुत्र

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद मानिया है। असी आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हां कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चे नाल गलबात पंजाबी विच करदे हो ता आप तंता जो हो, जे कुछ कसर है ता अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चियां पास पंजाबी विच गलबात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल ता इह समा उहनां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे ता गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना ता इक पासे रिहा, ओ गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकनगे? हो सकदा है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे। असीं तां उस दाते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ उन्ताई है ता ध्यान दियो ते ओ पूरी करो। आप जितनियां वध तो वध जवाना बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी तां सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही तां कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असीं तां अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया तां मुगल राज दा समां सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटाल हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसीं अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने होए हो ते अपनी बोली भी त्याग दित्ती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सजना मित्रां नूं भी इह सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो ते पंजाबी बोलन ते पंजाबी पढ़न लई संगतां नूं सचेत करो। अगों दाते दा अपना काम है, आप ही सहाई होएगा, फिर लोग

मोले पार बारिश करे। बारिश जोरन हरी अपने नितनेम अनुसार उठ के अपने मुर्शद नु इशनान कराउण वास्ते पानी गर्म करना चाहुंदा है पर अग बुझ गई। बारिश करके जोर दी बारिश होण करके अग बुझ गई। पानी किवें गर्म कीता जाए जे अज पीर नु इशनान ना कराया तां 12 सालां दी कीती होई खूह च पै जाएगी। अज आखिरला दिन सी हरी दी बंदगी संपूर्ण हो 12वें साल दा आखिरला दिन फरीद नु रब दे मिलन वास्ते कितनी कालना कालनी पई। जंगलां दे पत्ते तू के खा।

खोजत खोजत भई बैरागन। प्रभ दर्शन को हों फिरो तसाई, दीन दयाल कृपाल प्रभ नानक, साध संग मेरी जलन। माई रजनी ने, माई रंगड़ी ने किया फरीदा, किसे मुर्शद की सेवा कर आखो श्री वाहेगुरु, प्राप्ति मुर्शद तू हो गए। कोई गुरु धारण कर, बाबा जी वचन करते सन, कितना जप तप क्यों ना कर लवे इंसान, जितने तक गुरु वाला नहीं बनता वो जप तप सफल ही नहीं होता। कितना कर जी पातशाह ने इक्की वेरी तीर्थ यात्रा की थी, गंगा मैया दी स्नान की थी, हर साल जाते सन, होर भी कर्मकांड दान पर करते सन, पर बैरागी ने कह दिता सी ओ बाबा तो ता मेरा जन्म भ्रष्ट कर दिता है, क्योंकि तू निगुरा है आंखों श्री वाहेगुरु, मैं तेरे हथो पानी पी बैठा निगुरा गुरु दी। गुरु मिल गया भाई सब कुछ, असी गुरु वाले तां बनते हां जे अमृत छक लीए तो आखो श्री वाहेगुरु, फिर गुरु वाले बन जाते। गुरु का बड़ा मान है, जेदे गल च भाई पटा पाया वे कुत्ते दे ओनू कोई फिक्र नहीं, जे पटा ना हो फिक्र ही फिक्र। जेड़ा गुरु वाला बन गया वो अपने मालिक वाला खसम वाला बन गया, खसम का बड़ा मान, निगोरे का भी कोई चीज नहीं। लावारस कुत्तियां दे तरह मार मुकाया जाता है, उन्हां दा जीवन किसे काम है। गुरु दी वड्डी शक्ति, गुरु दा वड्डा आसरा है, गुरु दा बड़ा मान है। बुल्ले शाह ने लिखिया, ना मैं जब तक पूजा की थी, ना मैं गंगा नहाया, ना मैं पंज नमाजा पढ़िया, ना मैं हज कराया, बुल्ले शाह मैंने मुर्शद मिलिया उस एवें चा बख्शाया, एवें जिन ते मेहर करते हुए भाई मेरा स्वामी। माई रंगी ने कहा फरीद कोई गुरु तारण कर, चला जा आज मेर ख्वाजा पीर, पूरा गुरु है मुर्शद है ओनू जाके तारण कर। ख्वाजा पीर दे दर्शन कीते, हे मालिक दे प्यारे हो करो कृपा मेरे उत्ते, आवाज आई फरीद सेवा तू मेवा आखो।